0: गोली चांज जरा साकर चीजरा लूटीं जू
1: यही लंदर सदन बा काना चीजे लोटो जो
0: बेचे लोटो
1: बेचे लोटो रिंची
2: सिंके ना बचो कंकामजा दादा ने बेचो लोंचाई निम्चे ले कां कांगुई लोंचाई जे बुजी लोटो क्यों जुटी सूरी ह्याम ला बुहु रंजो जो मेंज कां नावरे काजी हिमजो सोए जोंडे नावे बुजी लोटो ला ये जोने बुहु मेटा लू दावा चुकुई दावी ता जाकर चिप्जो को अंगोटुं दोड़ी जे ह्योरी लम्सा हिरंगने
3: जे जे दुनको ही या ताजा ये टीम बा जोकर क्योटे जे न्यावा यंगो उन्जो कटी चम जाते दुन्जिंग हिमो शादा चिवा चे दुन थोरंग दागे अच्छे सम्ने रंगदी उतो क्योटे पे चे बा चिवी गं गं सुई वों हिंदुंग को मा मिं यालुं चंपो सो शे चु जी बी दुनको सिं क्योलो ला इजा ची बा दं यो तला दिनी सी सेर उन्गो की अ दु जाजी ले गा जामने शे गुए जे खुंग ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི
2: དབདན ཅམ རང དེ ཚི ཅུང ནེ སི དེ ཚི ཅུབ གེ སམ པར པམ ཏོ སང ཚི ཅུབ དེ ཆེ ང ཆ ཅེ ནེ ཚི ཅུབ ཅི ཆེ ང ཆ ཉི པར ཉི མ ན ཚི ཉེ སོམ ཉི དུ དོ ཅི ང ཆ ཅེ ནེ ཡ ཐ མི རང གེ སེ ཆ ཅིན བེ ཆོ ཡོང ཅི དེམ རེ སེ པ མན ཐོ ནེ ཆོ ལོ ཁང གོ ད སེ སེ གུ གུ ཡ ཤ ཐ ལམ བི གུ ཨུ ཅན སོ ཤིང རོ མང ཅེ བར ཨོ ང གོ ཡ ཅེ ཏུང དུ སེ ཤ ཅེ མོང དུ ལོ པོ ན གུ རོ མེ པེ ཏུང གོ ཚོ ང གུ སང སེམ པོ སང ནེ ལོ ཉེ ཤ ཅུ ལོ ཟོ ནེ དོ ཧ ཅི ཤ དུ ནབ ཟན ཚམ སུ ཏོ མན ཅི ᱱᱩᱜᱮ ᱪᱟᱢᱫᱟᱱ ᱨᱟᱦᱚᱞᱟ ᱱᱮ ᱭᱮᱞᱟᱢ ᱱᱚ ᱦᱩᱱᱚ ᱴᱨᱤᱯᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱥᱮᱵᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱮ ᱱᱤ ᱧᱮᱥ ᱯᱟᱨ ᱦᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱠᱟᱨ ᱥᱚ ᱛᱚᱝ ᱦᱮ ᱭᱟᱞᱚᱝ ᱜᱚᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱡᱟ ᱞᱚᱱᱚᱢ ᱢᱩᱥᱩ ᱭᱟ ᱥᱚᱵ ᱜᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱚᱯ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱨᱤ ᱪᱤ ᱠᱩᱫᱟᱣ
3: ᱡᱮ ᱡᱮ
2: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱮᱫᱟ ᱴᱩᱠᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱭᱩᱡᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱮᱱ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱮᱢᱛᱮ ᱠᱟᱴᱤᱠ ᱪᱮᱢ ᱥᱚᱝ ᱦᱤᱫᱟᱣ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱱᱥᱚᱞ ᱪᱟᱱᱥᱚᱱ ᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱨᱤᱫᱟᱣ ᱯᱮᱫᱟ ᱴᱩᱠᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱱᱮ ᱯᱮᱫᱟ ᱫᱮᱢᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱟ ᱪᱚᱭᱵ ᱡᱤᱥᱟᱢ ᱟᱜᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱯᱚᱱᱛᱚ ᱥᱚᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱫᱤᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱠᱤᱫᱟᱣ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱵᱫᱮ ᱪᱮ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱵ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱜᱟ ᱪᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱠᱤ ᱦᱤᱫᱟᱣ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱥᱚᱢ ᱱᱤ ᱡᱚᱡ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱮᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱜ
3: Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che chunpa cinri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishuk su tepa li dangba maang. Ci juki ni, basang jukar chui dingni rin, xalui juto si jula da maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar ngu ding nyonri chi chui bi, wishuk su rangshung nui ser to. Ci nye du ni, basang jia dun suru bianpa ni bi, du dira che lung to ser guba maang zi kuenka. Shila beda dukpa da yin na la da, Mechu lungsongka kanshi chisalido, yo shili na da, nangko chiyan chachin batsin rinzon da, batsin gwenye xe yon batsin rinzare yo xinga. Shira ci soni mima jukar nami dingni bi, wisho su tabali tangba maanzi kwenga. Da wizang shionda yinha xina la da, tabjido tangji xina la, tangju mo rezi nga. Dani ci nyeni goli yina la da, wisho su rangxiong nuecila dozi kwenga. Dani bada dhubaka